सगल मंतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक करम प्रभ पाई, साध शरण नानक ती आई।

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आप समूह संगतन के चरणों में बेनती है कि गुरु का लंगर तैयार है। आप जी ने छाके जाने की कृपालता करनी, परिवार वालों बेनती है, आप जी ने प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा। सपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा।

तप तपै जपै बेअंता तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी करके।

जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। घट घट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै। जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद है जेते वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आप रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जी अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट दिष्ट टरै तत्काला।

0: की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम

जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है। बिरखन बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कै मान है। पंचियन में हंस मृग राजन में सारदूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गोरा,

0: सुख मीत न पाई
1: अनुपा नाम तेरे संग सहाई
0: हे मां पयान दूध जम दलै
1: हे वन नाम संग तेरे चले
0: हे मुश्किल होवे अत भारी
1: अनको नाम फिरवाए
0: अनेक गुना चरण करत नहीं तरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया लाख करोड़ी बंद न परे अनेक माया दिन तिंखना बुझावे जे मार्ग यह जात अकेला ऐसा नामन सदा त्याई है छूटत नहीं गुनो कोट लग पाही अनेक बिजन जे आए सगार है अनेक जोन जन्मे मर जाम हाँ मैला मन कबू न तो वै ऐसा नाम जपो मन रंग जे मार के कने जाए न कोसा जय पैरे मां अंध गुबारा जा पन तेरा को ना सियानो जय मां पे अंध तपत मोह काम जा सिखमन तू जाक रखे

जन रंग रते रंग एक हर का नाम जन को मुकुट जुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जन की वड्याई हर का नाम जन को भोग जोग जन राता हर नाम की सेवा हर हर जन के माल खजीना हर हर जन के ओट सतानी ओत भोजन हर रस राते आठ पैजन हर हर जपै हर की भगत मुकुत को करे पार जाते हो हर को नाम सबते उत्तम हर की कथा नाम की महिमा सतनित वसै संत का संगवट पागी पाई है।

मिथ्याओं में ममता माया, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या आपस ऊपर

नित्यारसा भोजन स्वाद मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या वास लेत विकारा सफल दे नानक हर नाम ले सास बिना के हो

मनसनी पर ठाकुर प्रताते मनसा सा सिमरो प्रभु जे नानक ताकी भगत करे मंति सिमरन के आलस की जय मंति प्रभु को कब न विसारी राग प्रोहि प्रभु अपने मना उठत पटे सत्य से त्याई

0: साध के संग मुकुजल होत साध के संग मटे अभिमान
1: साध के संग प्रकटे सुज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रब नेरा
1: साध संग सब होत न बेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्माए समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस
0: पुंचा की रेन
1: साध के संग मनोहर
0: साध के संग नकत हुतावे
1: संग अस्तित्व मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न
0: साध संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग किस्यो नहीं बैर
1: साध के संग ना बीगा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग ना ही होताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बनाई
0: साध के संग ना कबूतावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग भक्त गोचर है
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचा
1: साधु के संग महल पूछे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उदार है
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है
0: साधु के संग सो तन पावे
1: इस तन ते सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय कर सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप लायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्प थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कचकाल
1: दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहां उहां सुहेला
1: साध संग बिछत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग न मिटता जावे
0: पार ब्रह्म साध रित बसे
1: नानक उदर साधु
0: बसे साध के संग सुनो हर नाम
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर्पन निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रमीठा
1: साधु के संग काटकर डीठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग।

0: ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श बड़ भागी पाई है।
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल मिल जाई है।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है।
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद।
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए द्याखर।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बुखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पाए।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदा।

0: अपेक्षा नेत्र
1: साथ की टहल संसंग हेत
0: सुने काहू की निंदा
1: सत्य जाने आपस को मंदा
0: साथ भिक्षा पर हरा
1: मन की बात ना मन ते डर
0: जित पंच तोकते रहे
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस विषन की माया आते हुए पिन इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो परम गत पावे
0: भगवंत भगत का रंग
1: सगल से आगे दुष्ट का संग
0: सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मत उत्तम होवे
0: टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे बिसन प्रीत नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: पंडित जो मन पर बोधे
1: राम नाम आत्म में सुध है
0: राम नाम सारस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: मन की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो नया वे
0: ग्रान सिमरत पूछे मूल
1: सुख में जाने असूल
0: को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा दे
0: सर्व को ज्ञान
1: तो वरना मैं जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए
1: साथ संग पावे जन कोए उतार है कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: जगत के तेना पाइए धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम दिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: निकट निकट हर जान
1: वो दास दरगाह परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सो जी पर है
0: संग आत्म उदास
1: ऐसी जगत नानक राम दास
0: क्या आत्म हितावे
1: जीवन मुकत सो कहावे सदा अनंत है नहीं वियोग
0: तैसा
1: अमृत ऐसी बिखाटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा राजान
0: जो बढ़ता है साईं जुगत।

प्रकार अष्टपति कई कोट आचार बिहारी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट तपिसर होते कई कोट कब का विचार है नान करते का अंत न पावे कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट विघातम निकोर कई कोट पर दुख न करे कई कोट पर देश प्रमाहे नान करते की जाने करता रचना कई कोट राधे रस भोगी कई कोट पादर विघ्न जाए कई कोट देश भूमंडल कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट गिरिमेश्वर थिवे कई कोट भूत प्रेत दुर्गम जाच नानक आप लिप्त रहा परपूर कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट बोझो निपरे कई कोट काले तक पाए कई कोट माया में चिंत नानक सब

कहीं कोट आकाश ब्रह्मांड, कहीं जुगत किनो विस्तार, सदा सदाई के कंकार, प्राप्त होए प्रमाय समात, आपे आप नानक प्रभु सोए, तिन होवत आत्म प्रकाश।

कबू पेकारी नीच का साजा, कबू पला पला कहवे गुर प्रसाद नानक सच है, कबू मोहन तारी लावे ज्ञान है, कबू से साधक मुख्यान है। अनक जोन

सदगे दुखन जम ते नहीं छुटे, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख सोवाते ही न, संत के दुख धाम प्रष्ट होए, नानक संत संग निंदक भी तरे, संतन के दुख काग न लवे, संत के दुख त्रिविध जोन किरमाए, संत के दुख सबको चले, संत के दुख नित जाए, नानक संत पावे।

0: एको एक एक पहचान है नाम राम नाम संग जिसका मन माने गुर प्रसाद आप सुझे
1: जानो तृष्णा
0: बुझे संग हर हर जस कहते।

0: जिसको हर प्रमाण चित आवे इस प्रभु अपना कृपा करे ऐसा जैसा सत ऐसा दृष्ट आया सोदत सोदत सोदत सीजिया जब देखो तब सब कुछ मूल जो किच करे सुप्रभु के रंग
1: वही।

अलख अपे पुरख प्रताप जिन प्रभ जाता शोभावंत रब के सेवक सगल उदाहरण आपे मेल लय कृपाल उनकी सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम।

मुखुजल हर दरगह सोए नानक ताके सत बलिहारे अरब साध को अपना दियो साध ऊपर जाइए इस प्राण

0: पूरे हो पूरन सब ठाए अपने कीमत आप पे पाई
1: सब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नान खरना
1: नाम के तारे सगले जन
0: नाम के

नानुसो सेवक सार सार समारे अपने सेवक की सर पर रखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि गदमित कोई न लखे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे नानुसो सेवक देदृत कटाया कदम करे।

जप नानक प्रभ अलख विणानी पी अमृत मान चंद्र पिए तिसके जोर नहीं दृष्टाया नमो सुखर नाम का संग मंत्र नामे नाम सुमाने को नानी जन कैसे।

वचने हर नाम उचरे गुरका सिख बिकाते हटे गुरका सिख बड़ पागी है सतगुर सिख को जी नाल समारे गुर की आज्ञा मन में सहे हर हर नाम से सत्यावे सेवक के कार्य रास जिसको होत प्राप्त स्वामी नानक सो सेवक गुर की मत ले सो सेवक पर

0: परसा चरंग निर्मल रीत पार ब्रह्म की दरगाह गवै बंधन तो गातम पत्याने
1: अमृत
0: देख हुए संत नानक जिस पावे तिस लय मिलाए सतपुरख पूर्ण विवेक अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी ताकि कीमत किने ना पाए चरण गम हृदय सिमरै नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने अमृत पी

0: संत नाम का निर्मल मंत्र सब लोग नानक मिट जाए
1: सोता नर सेवा ते पावे सो सुख साधु संग परीत जा सोपा पंजर की सनी
0: रोग मिटे हरम कदलाए जब नानक दरगह परवान हृदय बसे हर सुए सिमर सिमर सदा सुख पाओ भगत पाए आत्म प्रगास कहो नानक काटी जम्पासी जन्म सोका चौका चा आत्याम गुरुदेव हर हर सिमर प्राण आधार सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: मन बचत नानक फल पाए
0: तू क्या लपटा वे मूर्ख मना इनते कहो तुम कौन सुनाता इनते कहो कौन चुटकार झूठा डम झूठ पा सारी नाम विचार नानक पहचाना खुद बिना बोडू बेस आने निर्मल होए तुम्हारो चित जन्म जन्म के किल बिग जाए सुनत कहत रहत गुत पाओ कह सुभाए नानक गुण गाओ हूं मैं भी फैल सास ग्राज और नाम समाल सास संग पावे सचतना यह सुख दरगह जयकार कौन नानक जाके मस्तक लेख एक सिमर एक को मनाहे
1: मन तन जापे
0: एक भगवंत

की प्रभु भक्ति लाए अस्पति कृपा देवो हर नाम बार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरे साथ साथ प्रत में त्यावो भगत करो प्रभु की नित नित नानक मांगे नाम प्रसार हरत भावे बिरला कोई पूरन पुरख नहीं डुलाने उपजे चाओ साथ के संग अंतर प्रकाश अंदर लाग नानक नाम प्रत हुए सतगुर ते निर्मल मत लही

बिन पंक्ति तनु सिचार बुढ़ा जात पाए विश्राम नानक नाम जपो गुणतास मन तनंतरी स्वाहो मन भिक्षे

भगत वचन सदा कृपाल सर्व कटा कर प्रतपाल भगत जना के प्राण दान भगत पाए लावे मन हित नानक तुमरी शरण पुर।

जोश रूपी जो संग समावे कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई जय सर्व

संजना के हृदय सब धर्म सर्वव्यापी राम संरचन सतभजन साधु सब कहत करंक राम नाम प्रभु जाने नानक दर्शन देख समोई सगली उत्पत्ति पावे तो।

आपन जैसा आपिसना आज्ञा करी की नी माया जो कुछ कहना सो आपे कहे नानक जा पावे ताले समाए पूरे को किने कचकरा

0: ज्ञान कुदरत उनके साथे
1: करके प्राप्त भाव मिलाए अमृताव साथ संग्रहण पूरनोई सेव की सेव राम नाम।

0: मिट रे नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। जपयो जिने अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। तात विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। जपयो जिने अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: कल समुद्र पैरू प्रगट हर

अवर न कोई मन बच जिन जानियो पयो तै सम सर सोई तारन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रेहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख हर तारन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रेहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख हर।

0: पाए।
1: हिता किता तिता ना उड़नावे ना ही कुथाओ।
0: कमन कहा विचार वारे न जावा एक बार।
1: जो तुत पावे साई पली कर तू सदा सलामत निरंकार।
0: हाथ पैर तनते पानी तोते उतरस के।
1: मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओह धोए।
0: पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग।
1: उन्नी पापी आखण ना ही कर कर करना लिख लै जाहो।
0: जापे ही खाओ नानक हुक्मिया बुझाओ।
1: तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत न होए। कमन सुवेला वक्त कमन कमन थित कमन वार। वेल न पाईया पंडती जे

0: भगवती संत वह प्रसाद कथते के आछज दिसे के आपिज पिसे
1: के आकंज कर में के आपन पर में
0: के आबिज लोके के आदित सोके
1: के दूत बरने के प्रभुत करने
0: के राजन प्रभाहे के तरमंग तु जाहे
1: के अशोक बरने के सर्वा परने
0: के जतन कृति है के छत्रन छत्री है
1: के ब्रह्मन स्वरूपे के अनपो अनूपे
0: के आद अदेव है के आप अपेव है
1: के चित्रन बहिने के अधीने
0: के रोजी रजा के रही मेरे हक
1: है के आप बैब है के गैबुल गैब है
0: के अफगुल गुना है के शाहन शाह
1: है के कारण को निंद है के रोजी दहिंद है
0: के राजक रहीम है के कर्मं करीम है
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य
1: है के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र कौन है
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साध्य
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
1: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य
1: के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मन है
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वन कली में के परमन फही मैं
1: के आकल आलामे के सहायक कलामे
0: ये हुस्नल वजू है तमामल रजू है गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते
1: बनिंदुल मकाने जमीनुल जमाने
0: तमीजुल तमामे रजूल निदाने
1: हरिफुला जी में जरायते कीने
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
1: अजीतो निवाद है गरीमुल किराद है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुकत विपूत
1: है प्रभुक्त प्रभा है सजुक्त सुधा है
0: सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है
1: समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है
0: समस्तुल सलाम है सदैव

0: त्रिपुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है,
1: नरकम प्रनाश है, प्रचुल प्रवास है,
0: निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है,
1: विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,
0: निरुक्त सदा है, विपुकत प्रवाह है,
1: अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,
0: चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है,
1: अकर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है,
0: अजय है, अबे है, अपूत है, अतूत है,
1: अनाश है, उदास है, अदंध है, अबंध है,
0: अपकत है, बिरकत है, अनाश है, प्रकाश है,
1: अचिंत है, अचुनित है, अलिख है, अदिख है,
0: अलेख है, अपेक है, डा है, अगा है,
1: असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है,
0: अनित है, सुनित है।

0: कितना जमाल है,
1: असलम प्रकाश है कि मित्र सुभाष है,
0: के अजब स्वरूप है कि हम तो बबूत है,
1: तो पसा है कि आत्म प्रभा है,
0: के अचलम न नंग है कि हम तो अपंग है,
1: पाठ चंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गान मुदा,
0: हर भर गंज हर नर पर पांज,
1: अंगन प्रणाम मुन मन सला,
0: हर नर अखंड भर नर अमंड,
1: अनुपवनाश मुन मन प्रकाश,
0: गुण गान प्रणाम जल थल मुदाम,
1: अचिज अंग आसन अपंग,
0: उपमा पार गत में तू दार,
1: जल अमंड दिसविस अपंड,
0: जल थल महंत दिसविस बेअंत, आजान बाहु एक सुदाहु,
1: ओंकार आद कतनी अनाल,
0: खल खंड की आल गुर भर अकाल,
1: कर प्रणाम चित चरण
0: नाल, अंचिज गात अजिज न बात,
1: अंचिज गात अनरंज बात,
0: अंटुट पनार अंडठ पार,
1: अटीट तरम अटीट करम,
0: अनबर्ण अंत दात।

0: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है पाते पर है कृणा कर है
1: जपा जपे तपा तप
0: अत्ता कीर्त है अमृता अमृत है
1: अमृता मृत है करना
0: अत्ता कीर्त है तरभी कृत
1: है अमतेश्वर है परमेश्वर है
0: अत्ता कीर्त है अमृता अमृत है
1: जपा कृत है अमृता अमृत
0: है नर नायक है खलकायक है
1: संबर है करना
0: निपनायक।

0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्मवा परमवा गंजे अलेखे
0: जन नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अकंजुला नामे समस्तुल निवासे
0: कामन विभूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्म परनासी सुतर्म प्रभूते
0: सच्चिदानंद सतरंग परनासे
1: करी मल को निंदा।

0: मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिचकी हजार हजारे
0: पूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपा श्री भगवान मजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे
0: तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेष है
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के पेठ
0: कौन आहार जति जत थार सबे सुबिचार हजार के देखे।

0: है अपनो कर दे कर पाप सबूत ना भेटन पावे
1: और की बात कहा के तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे
0: जश पचंग सो दानव देव अपेव तुम्हें सब ही कर त्यावे
1: भूम आकाश पताल सातल जश पचंग सब ऐसे न्यावे
0: पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे
1: खोज सके सब ही कुजिया सुरहार परे हर हाथ ना आवे
0: नारद से चतुरारण से रम नारक से सब हूँ मिल गायो
1: वेद कर देव ना भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ ना आयो
0: पाए सके नहीं पार प्राप उमापत सिद्ध सनात सनातन ते आयो
1: ध्यान करो गय को मन में जय को मितोक सब जग छायो
0: वेद पुराण कतेव पुराण अपेव निर्पाण सब पचहारे
1: भेद ना पाए सक्यो अनपेद को खेदत है अनछेद पुकारे
0: राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साक ना सोग ना संग तिहारे
1: आद ना

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर
1: गुरुदेव सगायार भंजन गुरुदेव बंधन सोधरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशै गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव सांत सत बोध मूर्त गुरुदेव पद स्पर्श परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सत पाप हरता गुरुदेव पद पवित्र करा
0: गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा
1: गुरुदेव संगत

0: शरण तुहारी
1: मिले सुख नाम जो बचन तले हमारी
0: नस मुझे दूजी ठाहर हार रखियो तो द्वारी
1: लेका चोर लेका छुटे हमें गुल उबारी

पवन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं, आप नारायण कलातार जग में परवर्यो, निरंकार आकार ज्योत।

सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। जी सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़ है हजार इते चानन होंदे आ गुर बिन कोर अंधार। आप नारायण कला तार जग मह परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो सो कहो तल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत समदी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साह जिस पास बैठिया सोहिए सब नांदा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत सरी